0: सतगुरु कृपा कर इतनी महान इतनी महंगी इतनी इतने प्राइसलेस बचन गुरु के जो जिंदगी नू जिन मानस ते देव ते की जो आम मनुख नू उस परमेश्वर देव रूप परमात्मा रूप बना देन ऐसी समर्था रख दे ए बचन इन्हां दी समझ आ जाए। समझ ही नहीं आती कई बार, समझ विच आ जान ते ए ऐसी करामत कर देने कि जित्थों ए बाणी आई है उत्थे लै जाती। गुरु रहमत करे सानू इन्हां बचना दा दी समझ आए तां असी चल सकीए, तां ए हो सकन लोक सुखीए, पर लोक सहेले नानकार प्रभु आपे मिले। अगला प्रोग्राम प्यार नाल सरवण करो। फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु के साजी नवाजी साध संगत जी पावन बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण करा रहे सन। पंथ दे विद्वान कीर्तनीए सत्कारयोग भाई निरंजन सिंह जी जवद्दी कलां वाले अते उन्हां दा रागी जथा भाई साहब जी दा समुचे जथे दा बहुत बहुत धन्नवाद। गुरु प्यारी साहिब संगत जी भाई साहब आने वाले दिनों दे विच वी इसे तरह रोजाना ही शाम दे दीवाना विच 7:30 बजे तो आप संगतां नूं गुरबाणी कीर्तन द्वारा गुरु चरणा दे नाल जोड़नगे। आप संगतां नूं बेनती है कि वध तों वध हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करने जी। आओ समा है इतिहास दीआं विचारां दा, ढाडी वारां दी सांझ कर रहे हन पंथ दा प्रसिद्ध ढाडी जथा ग्यानी रशपाल सिंह जी पमाल ते उहनां दे साथी। आओ ढाडी जथे पासों एक कविता सरवण करके लाहे प्राप्त करिए, उपरंत परिवारां दी चढ़दी कला दी अरदास बेनती होवेगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
2: जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर बड़े प्यार ते सत्कार दे नाल जुड़ बैठी गुरु की प्यारी गुरसिख संगत। इलाही बाणी तुरकी बाणी दा रस पिना कीर्तन गुरु के महान कीर्तनी भाई साहब भाई निरंजन सिंह जी जवद्दी कलां वालिआं ने गुरु प्यारियां गुरसिख संगतां नूं निहाल कीता है। आओ अदब ते सत्कार दे नाल सतगुरु महाराज जी नूं सीस झुकाउंदे हुए गुरफतेह दी सांझ पाईए। आखो गज वध के जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अरदास दे विच असीं बड़े प्यारे ये बोल सांझे करदे हां, ऐ मेरे मालक ऐ सचे पातशाह जीओ कृपा करियो सानू सही प्यारे उन्हां दा मिलाप उन्हां दा संग उन्हां दी संगत दिओ जिहड़े तेरे नाल जुड़े हुए ने। जुड़ना ही जिंदगी, कीर्तन साडा जोड़दा है। बाबा फरीद जी दे पास उन्हां दा शरदालु उन्हां दा सेवक प्यारा सोने दी कैंची लैके आया। जदों सोने दी कैंची अगे रख के उन्हें सी झुकाया मत्था टेकिया, बाबा जी कहिंदे इहनूं चुक लै, साडा तां काम ही नहीं इह, साडे पास जे लैके आउणा सूई ते धागे नूं लैके आ। कैंची कटदी असीं कटदे नहीं, असीं तोड़दे नहीं, असीं तां जोड़दे हाँ। सूई अते कैंची, कैंची दी जिंदगी ते धब्बा दाग हो सकदा पर सूई दी जिंदगी ते कोई धब्बा दाग नहीं। जिहड़े परोपकारी आ उह हमेशा गुरु दे नाल जोड़दे ने। जुड़ना आओ गुरु महाराज अगे अरदास बेनती करिए, दाता सानू उस प्यारे दा संग दई जिहड़ा तेरे नाम दे विच ओत-पोत होया होवे अते जिहदे ते तेरे नाम दी रंगण चढ़ी होवे अते साडे ते भी कृपा हो जावे, असीं भी उस वाहिगुरु दे नाल अकाल पुरख दे नाल जुड़ जाइए। कोई मिल जे रब दा प्यारा प्यारे नाल जोड़ दे। ढाडी जत्था पमाल दा गा के इंज पेश कर।

0: नानक सच्चे साहेब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम आधार हो
1: साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सा भगवाया
0: शांत सुख मन आए बस।

देहो सजनिया सिसड़िया जो हुए सहिष्यु मेल कर कारे हो पहुँचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से दे अमन रागासा महला पहला छे कर छे गुर छे उपदेस गुर गुर एको वेसे अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो घर राख वडाई तुई रहाओ विसै चसिया घड़िया पहरा खेती बारी माहो होवा सूरज को रोते अनेक नानक करते के वे सराग तनासरी महला पहला गगन मै थाल रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन जबरो करे सगल कैसी आरती हुए पग खुंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत फेरी रहा सह सब नैन नन नैन है तुह तो सह समूरत ननायक तोही सहस पद विमल नानेक पद गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोही सब मैं ज्योत ज्योत है सोए

अधेय है अपेय है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है

अदेसल अलेख है, अमेसल अपेख है, जमीन अल जमा है, अमे कुल इमा है, करीमुल कमाल है, के जरूरत जमाल है।

जगदेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व उबारण है, त्रित के तरण है, जग के कर्ण है, मन मान्या है, जग जान्या है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्व पास्या है, सर्वनाश्या है, करुणा कर है, विश्वंबर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खल खंडस है, पर ते पर है, करुणा कर है,

सेव की संतो के जन सच्चो सच ध्याय उन मंदे पैर न रखे कुछ कर धर्म कमाया उन्हें दुनिया थोड़ा बनार पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सगला ने देवे चढ़े सवाया बढ़िया ही बड़ा पाया बढ़िया ही बड़ा।

0: अपनी गत मित जानो आपे
1: आपन संग आप रहते
0: तुमरी उस्त तुम ते होए
1: नानक अवर न जान सकोए
0: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म
1: हर को नाम जप निर्मल कर्म
0: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया
1: सा संग दुर्मत मल हया
0: सगल उद्दम में उद्दम भला
1: हर का नाम जपो जी सदा
0: सगल बानी में अमृत बानी
1: हर को जस रसन कथा

0: चाकर को रख मन माहे तिसको सिमरत परम गत पावे तिसे त्याई सदा मन अंदर
1: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
0: आठ पहर सिमरो तिस रसना
1: जय प्रसाद रंग रस भोग
0: नानक सदा ध्याइए ध्यावन जोग
1: जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे
0: तिसे त्याग कर तवर लंबावे
1: जय प्रसाद सुख से सोई जय
0: मन आठ पहर ताका जस गावी जय
1: प्रसाद तू सबको माने
0: मुख ताको जस

0: साद के संग मुख उज्जवल होत
1: साध संग बल सगली खोत
0: साध के संग मिटे अभिमान
1: साध के संग प्रगटे सो ज्ञान
0: साध के संग बूझे प्रवनेरा
1: साध संग सब होत नवेरा
0: साध के संग पाए नाम रतन
1: साध के संग एक पर जतन
0: साध की महिमा बरने कौन प्राणी
1: नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी
0: साध के संग अगोचर मिले
1: साध के संग सदा पर फुल्ले
0: साध के संग आवे बस पंचा
1: साध संग अमृत रस पुंचा
0: साध संग हुए सबकी रेन
1: साध के संग मनोहर बैन
0: साध के संग न कतहू तावे
1: साध संग अर्थ मन पावे
0: साध के संग माया ते पिन
1: साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न
0: साध संग दुश्मन

ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृतवासी ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ब्रह्म ज्ञानी सफल भला नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सकल संसार ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी अहमद त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश

ब्रह्म ज्ञानी सर जीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी

0: जीवे है मर है
1: कई कोट जोनी फिर
0: कई कोट बैठत ही खाहे
1: कई कोट काले थक पाहे
0: कई कोट किए तनवंत
1: कई कोट माया में जिंद
0: जह जय पाणा तह तह राखे
1: नानक सब

0: संत के दुखन जमते नहीं छूटे, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन सोभा ते हीन, संत के दुखन थान प्रष्ट होए,
1: कृपा जे करे
0: नानक संत संग निंदक पी तरे, संत के दुखन काज जो रवे,
1: सर्प जोन पर जोन पाए,
0: संत के दुखन तेरे जोन करमाए, संत के दुखन सब को चले, संत के दुखन नीच न जाए, नानक संत पावे ता ओ बिगत पाए, संत का निंदक खंडे करना पाए, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक दुखिया दीन, संत के निंदक को सदा वियोग, नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को सब त्याग, संत का दुखी सदा भिखारी, संत की दुख न सुखते डरे, नानक संत पावे ता लय मलाए, संत का दुखी किते काज ना पहुंचे, संत का दुखी उजड़ पाइए, जो सास बिना मित्र की लोथा, अपन बीज आपे ही खाए, नानक संत पावे ता लय उभार, जो जल भी मछली ता ठहराए, जो पाप कीर्तन नहीं त्रापे, जो बुआर तिल खेत माहे देहला, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, नानक जो तिस पावे सोई थिया, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी ना मरे ना जवाइए, संत का दुखी उठले नरासा, जैसा पावे तैसा कोई होए, नानक जाने सच्चा सोए, सदा सदा तिसको नमस्कार, तिसे त्यागो सास ग्रास, जैसा करे तैसा को थिया, दूसर कौन

जो कर पाया सोई होग। इसका मंत्र न जाने होर, सर्व थोक सुनिए करता के, तब मैं तपीसर कृष्ण में भोगी, नानक तिस पुरखा किने अंत न पाया, सकल देव हारे अवगाहे, सकल परोही अपने सूत, जन दास नाम त्यावे से, जन्म मरे फिर आवे जाए।

0: वचन कन अगाने
1: मन संतोखा तम पति आने
0: पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र
1: अमर दृष्टि देखे होए संत
0: मन बेअंत कीमत नहीं पाए
1: नानक जिस पावे तिस लए मलाए
0: जेहवा एक उस्तत अनेक
1: सत पुरख पूर्ण भावेक
0: लाहू बोल न पहुंचत प्राणी
1: अगम गोचर प्रभ निर्वाणी
0: निरा हार निर्वैर सुखदाई
1: ताकी कीमत किने न पाई
0: अनक भगत बंधन नित कर है
1: चरण कमल हृदय सिमरे
0: सत बलिहारी सतगुरु अपने
1: नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने
0: एहो हर रस पावे जन

0: नित वाचेमीत
1: सब साधु संग प्रीत
0: सोभा को करे पली करने
1: सोभा पद हकी सनी
0: पावी रोग न जाए
1: रोग मिटे हरे अखदलाए।

0: विचारे
1: भक्त करो मन लाए
0: मन वांछत नानक फल पाए
1: तेरे तना
0: तू क्या लपटावे मूर्ख मना
1: तमीत कटांबर वनता
0: इनते कहो तुम कवन सनाता
1: आज रंग माया विस्तार
0: इनते कहो कवन छटकार
1: सहस्ती रथ सवारी
0: झूठा डांब झूठ पास

नानक तुम्हरी सन पुरख भगवान एक नेमख हर के गुण गाए हर के नाम की कथा मन पाई रसना जापती हर हर नीत

0: कछ ना दृष्टेता
1: पाप हुंता कहते होता
0: उतारी अपन सुन समाद
1: तबै क्रोध के संग मात
0: इसका वर्ण चिन्ह न जापत
1: तब हर सो को से व्यापत
0: अपने आप आप पार ब्रह्म
1: तब भोगना के सोबत परम
0: अपन खेल आप वर्ती जा
1: नानक करने हार ना दुर्जा
0: प्रभु केवल तही
1: तब बंद मुक्त को किसको गने
0: अभी के हरि अगम अपार
1: तब नरक स्वर्ग को कौन अवतार
0: निर्गुण प्रभु सह सुभाए
1: तब शिव सत कहो के तठाए
0: जब आपे आप अपनी ज्योत तहे
1: तब कवन निडर कवन कत डरे
0: अपन चलत आप करने हार
1: नानक ठाकर अगम अपार
0: सी सुख अपने आसन
1: तै जन मरण कहो कहा विनाशन
0: करता प्रभु सोए
1: तब जम की त्रास कहो के सोए
0: अपविगत गोचर प्रवेका
1: तब चित्र गुप्त के सुपुष्ट देखा
0: नाथ निरंजन गोचर गादे
1: तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे
0: अपने आप आप ही अचर्जा
1: नानक अपन रूप आप ही अपर्जा
0: निर्मल पुरख पुरख पद होता
1: तै बिन मैल कहो के अतोता
0: निरंजन निरंकार निर्वाण
1: तै कौन बहान कौन अभिमान
0: केवल जगदीश
1: तै चल चिदर लगत को केश
0: ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
1: तै किसे फूक अंतर पतावे
0: अंत रावण करणे हार
1: नानक करते का नाही समार
0: अपनी शोभा अपन संग बनाई
1: तब कवन माई बाप मित्र सुत भाई
0: सर्व कला ते परवीन
1: तै

0: कुशल सहज आनंद
1: सास संकल्प परमानंद
0: निवार उधारो जियो
1: गुण गोविंद अमृत रस पियो
0: चित भव नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: पाल दामोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूरण कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का हे आधार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: अमली कलाल हे रतन
0: संत कमावत हो तो उधार सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लगा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहद वाजे
1: सुन सुन अंत करे प्रभु गाजे
0: एक पाल महात के माथे
1: नानक उतरे तिनके साथे
0: शरण जोग सुन सरनी आए
1: कर कृपा प्रभाव मिलाए
0: हिट गए बैर पे सवरेन
1: अमृत नाम साथ संग लैन
0: सुन